बियाले मन एक न चित समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हों जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना।

कव्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दे मोहि बचाव हो सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कम हूँ, तुम मैं मिलत देहि तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग जो याही सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई। संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस उन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे, हम एक न जान्यो। श्री

दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मन गार पाच पशु नग नाग निराधप सर्व समय सबको प्रतपार पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार दीन दयाल दया निद दुख देखत है पर देत ना हर सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद एहु तन अखुट

सोहेला राग कौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता किया करते कहे विचार तित कर गाव सोहेला सिवर सृजनहार तुम गाभो मेरे निरपाव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुकोहे रहाओ नित नित जीड़ समारियन देख्यागा देवन हार तेरे दान कीमत न पवै तिसदा ते कवण सुमार संभसा लिख्या मुल कर पावो तेल देहो सतन असी सड़िया जो होवै साहिब सुमेल।

पूरब लिखत लिखे घर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे, कर साधु अंजलि पन वडाहे, कर डंडौत पन वडाहे रहा। साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर होवे कंडाहे, ज्यो ज्यो चल चवध को पावे, जमकाल सहसर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया।

जो किछ है सो तेरा। कदों झोलियां भर दियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जा। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने, सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जाए। इतिहास विचों की सोझी मिलती है, लखां दी फौज ते एक पासे महाराजा रणजीत सिंह। आज इस मैदानी जंग विच रणजीत सिंह दी जित हुई है, कोई भी बैरी अगे ना खलोया। बड़े बड़े राजे महाराजे रणजीत सिंह दी बड़ी शोभा कर रहे हैं, रणजीत सिंह तू ते कमाल कर दिती है, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रणजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई वे सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम

दौलत बड़ा कोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है, मेरी भी झोली भर। सतसंगियो जंग मंगियाणी दी गल है, पक्षतान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है, दात प्यारी विसरिया दा तारा। जदों दातां मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया, शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया, पुत्र वड्डा हो

एक दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कढ दिता, तू मेरा प्यो नहीं तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोलती है, एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए, बाबा जी दी शोभा सुनी ते दीवान लगा होया है, समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है, जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलते ने ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। केड़ा गुनाह कीता है, केड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता, बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किस दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है?

संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे बाबा जी मैनू बख्श देवो, ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान, ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया, बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दित्ती। आखण लगे बचियो, मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने, जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं बाप दी सेवा करिया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारिया रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने, ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तो पहला तकदे हां भई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तो छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा वो प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है, कदों खुशियां आउणियां ने जदों सचमुच ही अंदरों आखेंगा सतगुरु मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है।

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपां तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां तले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करते सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखा नाल तक लगे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करते हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनते। कोई गुरसिखा खुशियां ते तेरे

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है अज इस दे गुरु ने लंघना है एवें उपरों उपरों आखी जांदा है वे सारा कुछ तेरा है आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है उदों क्यों सरफे ते उतर आया है नहीं बे दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है मेरा इस विच

राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर हृदंतर श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जन काज जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सख्यत फलो जग पाताल पुरी।

साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ जे बड़े आप जाने आप नानक नदरी करमी दात किते मंगे जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते अदुख भुख सदमार ए पे दातरी दातार जे को खाए आखन पाए ओ जाने जीतिया मुह खाए जिसनों बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह अमुला वह मुला जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल बख्शी समुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे वख्यान आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध किते आखे आखन पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे जेवड भावे तेवड होए नानक जाने सचा सोए सो दर की हा सो कर की हा जित बह सर्व संभाले किते राग परि सो कही अन किते गावन हारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पया।

0: बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वरम परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वरम परम ब्रिदे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम युक्ते
0: नमो नित नारायणे क्रू कर्मे
1: नमो प्रेत अप्रे देव सुतर मे
0: नमो रोग हता नमो राग रूपे
1: नमो शाह शाह नमो पू पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमो अस्तंग सनाने
0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच्चिदानंद सर्वंग प्रणासी
1: अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद कर्ता
1: अधो ऊर्ध अर्धं अंग हर्ता
0: परंग परम परमेश्वरं पोचपालं
1: सदा सर्वदा से दाता दयालं
0: अचेदी अपेदी अनामंग कामं
1: समस्तो पराजी समस्त

0: चकर बकर फिरे चतर चकमानिये पुरतीन
1: लोग चोदे के बिखे जग जा पहिजे जाप
0: आ देवनाद मूरत थाप यो सबे जे थाप
1: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
0: सर्व विश्व रचो छंजन कर्ण पंजन हार
1: काल हीन कलास जुगत काल पुरख देश
0: धर्म तांसु परम रहत पूत लख पेश
1: अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम
0: गर्भ कन्या दुष्ट पंजन मुख दाय काम
1: आप रूप मीक अनुस्तत एक पुरख दूत
0: गर्भ कन्या सर्व पंजन आद रूप असूत
1: अंगहीन पंगनातम एक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व काय सर्व कोपित पार
1: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक
0: सर्व शास्त्र ना जानिए जय रूप रंग और एक
1: परम वेद पुराण जाके नेत बाखत नेत
0: कोट शिव प्राण शास्त्र ना अभी बहुचित
1: मधुपात चंत प्रसाद गुण का अनुदान में मां पार
0: आचरण अपंग उपमान अंग
1: अंको प्रकाश निस्त नाना
0: आजान बाहु शाहान शाहु
1: राजान राजपान आन पान
0: देवान देव उपमा महान
1: इंद्रान इंद्र बालान बाल
0: रंकार रंग कालान काल
1: अद्भुत अंग बापंग
0: गत में तपार गुण गण उदार
1: गुण प्रणाम निर्वैन का
0: अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड
1: गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे करियंग नामे अकामे भुजंग प्रया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
0: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
1: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र
0: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चतर चक्र पासे च

0: रेखे
1: अकर्मवा परमवा गंजे अलेखे
0: भुजंग प्रयात चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अगंजोला नामे समस्तुल निवासे
0: कामन बेभूते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्म परनासी सुतर्म पभूते
0: सदा सचदानंद सत्रन परनासी
1: करिमल को निंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय बेभूते गजायब गरिमे
1: हरियम करियम करिमुल रहिमे
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते
1: शंभम शुभम सर्वदा सर्व जुगते
0: दुकालन परनासी दयालन स्वरूपे
1: सदायंग संगे अपंगम पभूते

0: राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सहज से ती मन

0: सब जाए।
1: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए।
0: गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सहु लिवलाए।
1: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए।

0: जूझ मरो।
1: तन जियो ते को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे।
0: दे अनित ना नित रे जस नाव चढ़े पव सागर तारे।
1: तीरज ताम बनाए तन बुत्सो दीपक ज्यों।

0: पौड़ी वड्डी हूँ वड्डा पार तेरा मर्तबा
1: रंग परंग लेख न जापन करतबा
0: जिया अंदर जियो सब किछ जान ला
1: सब किछ तेरा वास तेरा करपला
0: तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जान सर्व कला पर पूर दिसे जत कथा नानक दासन दास्त दे आगे बिनवता सर्व कला पर पूर

सतगुर सुख विखा लिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर न सूझे हर बिन बख्शन हार सतगुर सुख विखा लिया सच्चा शब्द विचार नानक अवर न सूझे हर बिन बख्शन हार हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुतदारा सियों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई एक अरदास पाठ की

सब तुम मात पिता हम बारिक कोई न जाने तुमरा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटिया।

बंधन बंध भवाय सोय पै कित नट सब को नट नट सचल से रोय उड न जाय सिद्ध न होय नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ फौड़े।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जाए आख गवाई है। जे लोड़ा चंगा है अपना घर पुनो नहीं दिसदा ही है। जे जरवारा पर हर जर वेस करेंदी आई है।

हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़िया कोई नाउ न जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौनी त्या वैताय। सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दर दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां जहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दित्ते बन बन कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु ही अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया।

सत्य अपराध करत है जीते, जननी चीत न राखस तेते, रामैया हों बारिक तेरा, काहे ना खंडस, अवगण मेरा।

ਜਨਮੰ ਹਰ ਦਰਸ ਲੀਨਾ ਬਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੀਨਾ ਕਹੰਤ ਬੇਦਾ ਗੁਣੰਤ ਗੁਣੀਆਂ ਸੁਨੰਤ ਬਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਨਿਰੰਤ ਸੋ ਬਿਦਿਆ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਜਾਚੰਤ ਨਾਨਕ ਦੈਨ ਹਾਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਮਾਤ ਪਿਤ ਭਰਾਤੈ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਕਛ ਲੋਕ ਕਹੈ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਬਣਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤੈ ਪਰ ਵਿਰਤ ਮਾਇਆ ਸਨਬੰਧਨ ਦਇਆਲ ਏਕ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖੈ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਹਿ ਅਨਿਤ ਵਿਤੰਗ ਅਨਿਤ ਚੇਤੰਗ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਿਤ ਹੇਤੰਗ ਅਹੰਗ ਬੰਧੰਗ ਪਰਮ ਮਾਇਆ ਮਲਨੰਗ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤ ਜੋਨ ਅਨੇਕ ਜਠਰਾਗਨ ਨਹਿ ਸਿਮਰੰਤ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧਿਅੰ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਿਤ ਪਾਤਾਲੰ ਜਲੰਤ ਦੈ ਦੀਪ ਬੈਸਵਾਂਤਰੈ ਬਹੰਤ ਅਗਾਹ ਤੋਇੰ ਤਰੰਗੰ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੰਗ ਤਾ ਮਰਨੈ ਅਨਕ ਸਾਧਨ ਨ ਸਿਧਿਅਤੈ ਨਾਨਕ ਅਸਥੰਭੰ ਅਸਥੰਭੰ ਅਸਥੰਭੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸਵਾਜਨੈ ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਰਿਦਰੰ ਮਹਾਂਬਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ ਅੰਧਕਾਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੰ ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਅਗ ਖੰਡਨੈ ਰਿਦ ਬਸੰਤ ਪੈ ਭੀਤ ਦੂਤੈ ਕਰਮ ਕਰਤ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੰਤ ਸਰੋਤਾ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਅਮੋਗ ਦਰਸਨੈ ਸਰਨ ਜੋਗੰ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਖੇਮੰ ਕਰੋਤ ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰ ਨੀਵਹਿ ਨਿਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨੈ ਨਿਰਧਨ ਭੈਂਗ ਧਨਵੰਤੈ ਰੋਗੀ ਅੰਗ ਰੋਗ ਖੰਡਨੈ ਭਗਤੇ ਅੰਗ ਭਗਤ ਦਾਨੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਰੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਤੈ ਆ ਧਰੰ ਧਰੰ ਧਾਰਨੈ ਨਿਰਧਨੰ ਧਨ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰੈ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੈ ਬਲਹੀਨ ਬਲ ਕੇਸਵੈ ਸਰਬ ਭੂਤ ਦਇਆਲ ਅਚੁਤ ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਦਾਮੋਦਰੈ ਸਰਬਗ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨੈ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਰਨਾਮੈ ਘਟ ਘਟ ਬਸੰਤ ਬਾਸ ਦੇਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਜਾਚੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਨਹਿ ਬਿਸਰੰਤ ਨਹਿ ਬਿਸਰੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹਿ ਸਮਰਥੰ ਨਹਿ ਸੇਵਕੰ ਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਤਮ ਤੁਐ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੰ ਪਰਨ ਪੋਖਨ ਕਰੰਤ ਜੀਆ ਬਿਸਰਾਮ ਸ਼ਾਦਨ ਦੇਵੰਤ ਦਾਨੰ ਸਿਰਜੰਤ ਰਤਨ ਜਨਮ ਚਤੁਰ ਚੇਤਨੈ ਵਰਤੰਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦੈ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਅਨਿਤ ਰਚਨਾ ਨਿਰਮੋਹ ਤੇ ਦਾਨੰਗ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਨ ਪੋਚੰਤੈ ਮਹੀ ਪਤੈ ਬਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰਗ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗਤੇ ਬਿਰਥਾ ਅਨਗ੍ਰਹੰ ਗੋਬਿੰਦੈ ਜਸ ਸਿਮਰਨ ਰੇ ਧੰਤਰੈ
आरोग्यं महारोग्यं बेसिमृत करणामह रमनं केवलं कीर्तनं सो धर्मं देहे धारिणे अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संत ना तृप्यतै सहनशील संतं सम मित्रस दुर्जनै नानक भोजन अनक प्रकारे निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंगनै शोभाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखनै गोविंद नाम जपंत मिल साध संगै नानक से प्राणी सुख बासने सैना साध समूह सूर अजितं सनाहं तन निमृता आवद गुण गोबिंद रमनं ओट गुर शब्द कर चरमन अरूढ़ ते असव रथ नागै भोजंत प्रभ मारगै विचरते निरपैं सतर सैना तय अंत गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पंच तस्कर है मृग त्रिष्ण गंधर्व नगरं ब्रह्म छाया रच दुर्मत है तते कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नाच विद्या निदान निगम नाच गुणंग नाम कीर्तन है नाच राग रतन कंठं नह चंचल चतुर चातर है भाग उदम लबदिंग माया नानक साध संग खल पंडित है कंठ रमनी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम धारनी जीह पन जो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी गुर मंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्ट नै कूकरै सूकरै गर्तबै काकै सर्प नै तुल खलै चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारनै कीर्तनंग साध संगेन नानक नह दृष्टांत जमदूत नै नाच दुर्लभं धनं रूपं नाच दुर्लभं स्वर्ग राजनै नाच दुर्लभं भोजनं बिंजनं नाच दुर्लभं स्वश अंबरै नाच दुर्लभं सुत मित्र भरात बांधव नाच दुर्लभं बणता बेलासै नाच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नाच दुर्लभं चतुर चंचलै दुर्लभं एक भगवान नामै नानक लाभदिं साध संग कृपा प्रभं जात कते तते दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमनं गोबिंदै नानक लेप शेप न लेप्यतै बिखिया पै अंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजनै दुखियंग पै अंत सुखियंग पै पीतंग तान निरपह थान बिहून विश्राम नामंग नानक किरपाल हर हर गुरै सर्ब सील ममंग सीलंग सर्ब पावन मम पावन है सर्ब कर्तब ममंग करता नानक लेप शेप न लिप्यतै नह शीतलंग चंद्र देव है नह शीतलंग बावन चंदन है नह शीतलंग शीत रुतेन नानक शीतलंग साध स्वजन है मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानंग सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालंग सर्वत्र जिया पंच दोख बेवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है
उपदेशं सम मित्रै सतरै भगवंत भगत भावने पर निंदा नह स्रोत श्रवण आप त्याग सगल रेन कह खट लखियन पूर्ण पुरख है नानक नाम साध स्वजन है अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केह रह ततर गत संसार नानक सोग हरखंग ब्यापते शलंग शिद्रंग कोट बिघनंग अपराधंग कल अपराधंग किल बिखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया ब्यापतंग मृत जन्म परमंत नरकै अनक उपावंग न सिद्धे अते निर्मलंग साध संगै जपंत नानक गोपाल नामंग रमंत गुण गोबिंद नित प्रतै तरन सरन स्वामी रमन सील परमेश्वरै करन कारण समरथ है दान देत प्रभ पूर्ण है निरास आस करन सगल अर्थ आल है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्ब सुख न दुर्वचन भेद परमंग साकत पिसनंग ता सुरजन अस्थितंग सोग हरखंग पैखीनंग ता निरभवै पै अटवींग महानगर बासंग धर्म लखियन प्रभ माया साध संगम राम राम रमनंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग हे अजित सूर संग्रामंग अत बलना बहुमर्दन गण गंधर्व देव मनुख्यंग पस पंखी बेमोहन हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी परमावन चित हरनंग त्रैलोक गमंग जप तप सील बेदारन अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन तवै भय बै मुंचत साध संगम ओट नानक नारायण हे कल मूल क्रोधं कदंच करना न उपर जतै बेखे अंत जीवं वस्यं क्रोत निरतं क्रोत जथा मरकटै अनक शासन तड़ंत जमदूतै तव त्वै संगै अतमंग नरह दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखिया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिर मोर अनक लहरी कलोलते तावंत जियं बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बादव नच मात पिता तव लज्जया अकर्ण क्रोत अखाद खाद्यंग असाजयंग साज समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी बेआगपत नानक हर नर हरै हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा मित्रंग तजंत सतरंग दृढ़ंत अनक माया बसतीरण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगन परम पयान उद्यान रमनंग महा बिगट असाध रोगन वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंदै कृपा निधान जगद गुरु हे संसार ताप हरनै करुणा मैं सब दुख हर